0: सुपते निसमें सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मन के अंदरों दुविधा मिट जाती है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखता है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी के पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हाथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी पर फकीर ने कहा खाली हाथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें काल खंदी आमदन वाला हाथ जिहड़ा कुछ लै के आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी का है किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कविया के ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है ये गल इस तरह है। कविया के जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करे प्यार सत्कार नाल आओ श्रवण करते हाँ। प्यार सत्कार नाल दसना करिए पवित्र गद के आ

0: जे सन्मुख हो के जंग करेगा ता निष्कामी तो खैर स्वर्गां नूं नहीं जांदे, तो सचखंड नूं जांदे ने। जे सकामी बंदे हुंदे ने वह स्वर्गां नूं जांदे ने। जिहो जिहो जी किसी की इच्छा हुंदी है, जिहो जी मानसिक अवस्था हुंदी है, जिथे कि ध्यान टिकिया हुंदा है, मरन लग्गिया जिथे सुरती लग गई, कईयां नूं मरन लग्गिया बच्चे याद आ जांदे ने, कईयां नूं मरन लग्गी स्त्री याद आ जांदी है, कईयां नूं मरन लग्गिया वाहिगुरू वाहिगुरू चेते आ जांदा है। वह अपनी अपनी बिरती के मुताबिक ही जाके उस स्थान ते पहुंच जांदा है।
1: लज धीरज ते भजै जग मैले अपवाद।
0: जिहड़ा बंदा जंग करदा होया धीरज छड के जंग विचों वापस भज्जिआ आवे, कहिंदे ओह बंदा सारे जग दे विच बदनामी खट लैंदा है।
1: मरे पाप फल भोगै पाए न किस अहलाद।
0: ओह मर के पापां दे फल भोगदे ने, दुनी चंद रस्सा टुट गया, फिर किवें लत टुट गई, फिर सप्प लड़ गया, की मिलिया? कुछ नहीं मिलिया। इस करके महाराज कहिंदे ने फिर अगे जाके पापां दा फल पाउंदे ने, ओह बंदे नूं किते भी आनंद नहीं मिलदा।
1: जात बरण की काल तज मिला खालस संग।
0: कहिंदे जात हुंदी जिहड़ी जात पात वर्ण आश्रम, इन्हां दी कान छड के खालसा आपस विच मिलके रहे।
1: गुरबाणी सो प्रेम कर मन रब गूढ़ा रंग।
0: कहने गुरबाणी दे नाल प्रेम करो, मन नूं गूढ़े रंग विच रंग लो, नाम दे रंग विच रंग लेना, गुरबाणी पढ़नी, गुरबाणी नाल प्रेम करना।
1: अमरो है उपदेश अस जो धारा सुख पाए।
0: महाराज कहने ये साडा उपदेश है, जेड़ा बंदा भी धारण करेगा साढ़े उपदेश नूं वह सुख पावेगा।
1: वदै खालसा जगत में सब अवनी पर छाए।
0: कहने समा पा के खालसा वधेगा, सारी धरती दे उत्ते खालसा छा जावेगा।
1: वदै पंथ पर धर्म ने या बिद कल का धर्म।
0: कहने कलयुग का एक धर्म थोनों दसदे हैं, वदै पंथ, अपना पंथ तां बहुत वधेगा पर जिहड़े होर धर्म भी बहुत चलणगे, जिहड़े होर धर्म चलणगे ना दुनिया दे विच ओह नहीं वधणगे, ओह थोड़ा जिहा चिर चल के डिग पिया करनगे।
1: वरतै सकल जहान में बिरला जाने मरम।
0: सारे जहान दे विच लोक आपो अपना धर्म चलाउणगे, कोई किते नवें तों नवें गुरु बणनगे, नवें तों नवें पखंडी लोक पैदा होणगे, लोक उहनां विच उलझणगे भी, पर कोई अपने धर्म के मर्म नूं भेद नूं जान नहीं सकता। लोग धर्म नूं असल धर्म लोग समझदे ही नहीं कि धर्म है की चीज, धर्म नूं लोग मखौल करदे ने।
1: बिरला जाने मर्म।
0: बिरला बंदा मर्म तो भाव हुंदा भेद नूं जानेगा।
1: करता हुक्म होए हो मैं तब कल जोरे हाथ।
0: सो इस तरीके नाल कहिंदे जदों करता दा हुक्म होया उस वक्त कलयुग ने हाथ जोड़े। महाराज कहिंदे कलयुग साडे कोल आया भी सी, जदों कहिंदे असी संसार दे अंदर अवतार धारिया, कलयुग ने भी आउणा सी तां साडे कोल आ के बेनती भी कीती उहने।
1: राज तुम्हारो बेर हम हमें पंथ के साथ।
0: महाराज नूं कहिंदा जदों तुहाडा राज होवेगा मेरा भी राज होवेगा, तुसी भी आओगे उदों तां मैनू अपने पंथ विच रला लो अपने नाल। इस तरह महाराज कोल बेनतियां करदा सी।
1: जगन्नाथ की ठोर मुए द्वारका मैरन छोर।
0: पर जो कहना एक तां जगन्नाथ वाले थां ते मैनूं टिकाणा मिलिया होया, एक द्वारका दे विच मैनूं टिकाणा मिलिया होया, एक कई जगह दे उत्ते मैनूं माफी है जाण दी, ते तुसी भी अपने धर्म विच जरा मैनूं माफी दे दे आउण दी।
1: तैसे तुम मन राखियो सकल करूंगा काज।
0: जिवें उन्होंने मैनू रखिया तुसी भी मैनू रखो,

अखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमख सिमरत जित छूटै। सो कलयुग ने भी यही वचन कहा कि मेरे समय विच जे कोई थोड़ा मात्र भी आखेगा वाहेगुरु वाहेगुरु ओदा भला भी होवेगा, अथवा जे कोई अंतम समय भी नाम जपेगा वो भी तरेगा। सो इस तरह बैखरी बाणी मध्यमा पसंती परा बाणी का जिक्र करद्या प्रसंग संपूर्ण होया सी। आओ अगे श्रवण करते हाँ महाराज दे 52 कवि अते बचन विलास सोहणे ढंग नाल बाणी दी महिमा प्यार सत्कार नाल श्रवण करिए। रसना नूं करो पवित्र गज के आखो सत

0: मंत्र जंत्र कल माए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के एक बार जेडे मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत

0: सतगुरु कहते कर हर ट माला टिंड प्रो ध्यान दो जी जग दकादरता बख्शियो कवास आना आप बजुर्गा ने वेखिया खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु गल करो
1: वाहिगुरु
0: खूह दे विच एक चीज पानी भरन जेड़ी वगदी सी ओनू कहिंदे
2: टिंड
0: माल ते जेड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी ओनू कहिंदे टिंडा ओनू टिंडा कहिंदे कर हर ट एक खूह बना आज जे सवास ने तेरे इन्हां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे तौण अकादरता बख्शियो इस माल नूं जिहड़ा खूह आए नूं खिचे तौण कहिंदे इस पीतर मन जोगो इस पीतर बलदा की जगह से इन खिंचन किनू जो कौन किनू जो मन नीच जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए इस खूह दाला टिंडा खिंचन मन बलद बनाओ तो मन तो साडा सिमरन करद भी दौड़ता रहा है साहब कहते ने तू मन जोड़ के इन्हों टिंडा खिंच अगे जाके कहते अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेतीबाड़ी करते उन्होंने पता है एक छोटिया छोटिया मटा पा के खेत दे विच की पा दी दे खेतीबाड़ी करते तुहानू पता पिंडा दे रहने वाले खेतीबाड़ी करने वाले पता क्यारे पा दी दे साहब कहते ने अंदरों मन नू जो के आज सवासा की टिंडा की माला ए मन नू जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सोकर मैं धन गुरु ग्रंथ साहब पिता जी पूछा महाराज शरीर से कहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री कद के बोलो सतनाम खेतों में क्यारे होंगे इतने क्यारे कहड़े कहते अखां नाम जपन वाले दमृत ना भर दिंदियां अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत बदल लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी परसन लग पा फिर आखिया महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत भर जी गल कर लगता वा फिर कहने फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपन वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपन वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नू जो इस सवासा की माला बना मगर ए जे बरतना होया जे मन नू तू ना विच जोता सिमरन विच मन नू ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्यो अमृत आना नहीं ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कुछ नहीं मन नू विच जोना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओ तो गज के बोलो ना तो

0: मेरे साहब ने बख्शा करतिया रहमता करतिया मेरे साई ने मेनू एक गल दस दी के जेडी बलदी आ गया जल दी बलदी जल निवरे कृपा ते जेडे अंदर भांबड़ संसार दे बजदे ने ए सारे संसार नू जगत जलंदा रख ले। गुरु अमरदास महाराज आखर ते गुरमुख प्यारे हो जगत जलदा हो ताई गुरु ने वचन आखे ने ना के जगत जलंदा रख ले। सानू ते तरह लगदा एसी कारा विच बैठे ने हे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ए सोहने घरां विच बैठे ने एसी लगे ने ए उत्तों वेखण नू बड़े सुंदर लगदे ने इन्हां दी चमड़ी चिट्टी आ उत्ते रंग मिले ने तरह तरह दे सोहने कपड़े पाए ने उत्ते सोने दे वगहने पाए ने मालक संसार बड़ा सुखी आ। मगर मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने वेख्या कि ए सारा जगत जल रहा है सारा जगत थोड़ा जा शांत होके जिदन वेखोगे सारा संसार वाकई जल रहा है सारे संसार नू अग लगी। जद धन गुरु नानक पातशाह ने पहली उदासी शुरू की है ना ते धन गुरु नानक पातशाह दे वचन भाई गुरदास जी इस तरह भी करते ने बाबा देखे ध्यान धर बाबे ने ध्यान ला के वेख्या गुरु नानक साहब ने कि आखिर संसार दुखी है ते इन्हां दा इलाज कितना करना है बाबा देखे ध्यान धर फिर की दिखिया जलती सब पृथ्वी दिस आई बोलो जलती सब तुसी सोचो साडिया अजे अखां नहीं गिया ओ आ थोड़ा जा पिछे कल जिदन आए फ्री माउंट तो रस्ते दे विच आ घा नू अग लगी वेखी घा नू अग लगी मीलां दे मील लगी है फायर ब्रिगेड वाले बजा रहे ने मगर ओ अग सानू किन्नी भयानक लगदी आ मगर जिधर सड़िया अखां खुलण गिया ते धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे सारी पृथ्वी जल रही सारा संसार जल रहा है सारे संसार नू अंदरों ईरखा दी अग लगी चार तरह की अग दसी महापुरुषा ने आखो सतनाम श्री फिर एक बार आखो सतनाम अपने अपने परिवार के भले लिए आखो सतनाम श्री वाहे चार तरह की अग दसी आ पहली अग ते मां दे पेट विच जिहड़ी लगदी इहनू कहिंदे जठर अग्नि की कहिंदे ने जठर अग्नि जिहड़ी मां दे पेट विच जैसी अग्न उधर मैं अग अंदर उधर दे विच भी कोई अग आ जिथे जीव पकदा है जिथे जीव बनदा है जिथे अग्न पखे पड़हारे अंदर फिर पहली अग जठर अग्नि दूसरी अग्न दावा अग्नि जड़ी जंगल नू लगदी है लिखा भू नू लगदी तीसरी अग नल अग्नि दसी है जड़ी गुरमुख प्यारे समुन्द्र दे पानी नू लगदी एक चौथी अग महापुरुषा ने पुछया जी आप जी कृपा करके दसो चौथी अग केड़ी कहिंदे ओ सब तो भयानक आ ते सारे संसार विच लगी आ आख्या जी ओ केड़ी कहिंदे ईरखा दी अग्नि कदी तुसी चिड़ी नू किते शीशे अगे बैठे वेखो कदी ध्यान देना एक शीशा नंगा होवे ते आपां इंडिया विच वेने चिड़ी शीशे दे अगे बह जांदी सी सारा सारा दिन भुखी मर जांदी सी मगर चुंझा मार मार के अपने मुंह दे विचों लहू कढ लैंदी सी कहिंदी दूसरी चिड़ी क्यों आ गई है उहदा ही परछावां है उहो ही फोटो दिस रही आ मगर ईरखा की अग अंदर इनी बल रही है कहिंदी जिथे मैं बैठी हां उथे दूसरी चिड़ी क्यों आ गई चुंझा वेखी आ ना वेखी है ना चिड़ी शीशे अगे मार मार के चुनिया ए ईरखा की अग जानवर तो लैके कीड़ी तो लैके संसार दे हर जीव नू लगी पई आ मेरे साहब कहते सारा संसार जल रहा है मेरे मालक ने चंगा किता है मेनू खुदा की बंदगी नाल जोड़ दिता है नहीं तो मैं भी सड़के मर जांदा बाबा फरीद जी इतना कहते जी
1: फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरी
0: ए बड़ा प्यारा वचन जे एक बार सारे आख लिया करो सतनाम श्री वाहे नाले ते इथे रहिंदा है चेता रहिंदा वा नाले परिवार दा ते देह दा भला हुंदा है आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जे जाना तिल थोड़े बोलो जे जाना तिल तिल समझदे हो आ तिल जिन्हां दा तिल कड्डी दे बाबा फरीद कहिंदे जे मैनूं इह पता लग जाए कि मेरे कोल तिल थोड़े ने ते फिर बुक भर भर के मकावां ना ओ किहड़े तिलां दी गल कर रहे ने ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ

कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी नदाना तुमरी महिमा वर्णन न सको।

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सा, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा
0: चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे

0: हे मेरे सतगुरु असी अज्ञानी थोड़ी मत दे जीवियां साडे ते कृपा कर सानू समत बख्शे। इस घर दे फैसले सुनी दे ने, इस घर दे फैसले थोपी दे नहीं, इस घर दे नाल जुड़ी दा है। इस घर ते आण के आखीदा तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम, मगर अज जिहड़ा दो किताबां पढ़ लैंदा कहिंदा नहीं मेरी मत ज्यादा है। गुरु घर विच विद्वान पैदा होण, भाई गुरदास जी वर्गे विद्वान पैदा होए ने, भाई वीर सिंह साहब वर्गे विद्वान पैदा होए ने, होर कई गुरमुख प्यारियां रूहां इस घर विच विद्वान पैदा होईयां है, मगर गुरमुख प्यारे हो वो विद्वता गुरु तो उच्ची नहीं, अपने आप नूं नीवां करके रखना है। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने भाई नंद लाल कोलों जूठे बर्तन साफ करवाए, इतिहास के पन्नियां विच आउंदा है मेरे सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह आप सिखां दे जोड़े साफ करते रहे। आओ आपा भी उस रस्ते नूं अडाप्ट करिए, आपा भी उस रस्ते ते गुरसिख मीत गुरु दी चाल उत्ते चलिए। अज साडे कोलों गुरु दी चाल, आ कुर्सियां ते बह के लंगर खाना सी ना जिहड़ा, आपां गुरु दी चाल तो भटक गए। जे गुरु दी चाल, हर चाल गुरु दी उत्ते चलिए, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। ए कथा निराली जिहड़ी आ गुरु दे कहे होए बचन, मेरे सतगुरु कृपा करे सिख नूं कमाउणे आ जाण। अज मन विच सोच रहा सां, इक वार आखो सतनाम श्री। 1978 तों बाद गुरु दे सिखो गुरु नानक दे घर दे टुकड़ खाना वा दर्द ते आउंदा ही आ। 1978 तों बाद इस कौम दे पैर नहीं लग रहे, नित कोई ना कोई ढेंदी कला दी खबर सुनदे। 1978 तों बाद कोई भी एहो जिहा दिन नहीं आया जिदन मेरी कौम ने कोई चढ़दी कला की गल की होवे कि कौम कठी हो गई आ, इस कौम नूं सतगुरु गरीब नवाज ने आ कर दिता है, इन्हां कठे बह के आ गुरमता कर लिया। आ थोड़ी ठंड कल पई है, जिहड़ा नरेंद्र गरेवाल दे बरखलाफ 10,000 प्राणी एकदम खड़ा हो गया। मेरा सतगुरु कृपा करे मेरी कौम सचेत होवे, जिथे वेखे के गुरु पंथ तो उल्ट कोई जा रहा है, सिख सिख दे उदो ए ना सोचे कि मैं इस धड़े दा वां। पहली गल ते धड़ा सिखी विच है ही नहीं, आखो सतनाम श्री। धड़े दा काम सिखी विच है ही नहीं, जिथे वैर ते विरोध आ उथे गुरु नानक दा घर ही नहीं। गुरु नानक दा घर यार रोज कहा जांदा होवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, ते उथे चार डंडियां होण ते चार भी आपस दे विच तिड़कियां होण, चौवां दी मत ना मिलदी होवे, चौवां दी मत एक गल ते ना खलोंदी होवे। मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कृपा करन, यह जिहड़ा बेस बनना है, यह जिहड़ा मुढ तुहाडा ते मेरा बनना है, गुरु दे प्यारियो सेवा ते सिमरन नाल बनना है। ते आओ मेरा सतगुरु कृपा करे, मन विच किते शंका ना लियाउणा, प्रभु दा सिमरन करना पखंड नहीं, सारी सारी रात बह के कीर्तन करना जगराता नहीं, सारी सारी रात बह के सतगुरु गरीब नवाज दे चरणा नाल जुड़ के ओहदी उस्तत विच जागना, जागन नीका हर कीर्तन में जागना चंगा है। सारी सारी रात मेरे सतगुरु की याद विच जुड़ के कोई चौंकड़ा मार के सिमरन करे। ते आओ गुरु नानक पातशाह दे चरणा ना अपनी सुरत जोड़ो, शब्द सिद्धांत विच आण के नक दी करुंबली ते सुरत टका के सतगुरु दे चरणा विच जुड़िए, आपां वाहेगुरु गुरसिमरन दे विचों आनंद लईए। गुरमुख प्यारियो, भगत भीखन एक ऐसा वचन कहिंदा, कहिंदे ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हिरदे राखिया रतन ना छपे। अगे पढ़ के वेखो, हर गुण कहते कहन ना जाई जैसे गूंगे की मठियाई। ए गूंगे दी मठियाई आ, एदे बारे कौन दस सकदा वा कि जिन्ना चाखिया, जिन्नी चाखिया बोलो जिन्नी, तिनी साध आया, तिनी मेरे साहब जी कहिंदे जिन्हां ने चख्या हो प्यारे हो, जिन्हां कदी अमृत वेला संभालिया ही नहीं, जिन्हां कदी केसी इशनान कीता ही नहीं अमृत वेले उठ के, ओ बंदे उठ के आखण केसी इशनान करन दी कोई जरूरत नहीं, ओ बंदे आखण अमृत वेले उठण दी कोई जरूरत नहीं। आओ मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालक दे चरणा नाल जुड़ के सिमरन करके वेख लो, हुणे ही पता लग जू आनंद कितना वरदा है। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह
1: ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ
0: ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿੱਤ ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੱਛੋ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਪਖੰਡਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਏ ਮਟਾਵੋ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਚ ਜੁੜੀਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੱਭ ਧਾਨੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਲੱਭ ਜੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਿਹੋ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨਿਹੋ ਕਿਚਰ ਝੱਤ ਲੰਘਾਈਏ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੇ ਮੇਹੋ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ
2: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी जे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनू कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो तां आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते औगण वाली नूं ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने औगण यारी कंत न पावे बोलो औगण यारी सारे बोलो जरा औगण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी औगण यारी उस मालक नु चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा ओदा सुभा नु इहने जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहना नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणा दियां मालक ने ते आपा इस करके गुरमुख प्यारो मेरे सतगुरु दे चरणा विच बेनती करनी आ कि आपा नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वा मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वो

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाह।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वड्याई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

0: हाथ जोड़ो सतगुरु दे चरणा च तरला पाओ, सतगुरु ए जलदे बलदे संसार चो अपना ओट आसरा दे के बचाला। आओ हुण लड़ीवार जो कथा आरंभ आ, सतगुरु दी पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे मुबारक बचन आप जी सरवण करने। पहलो आप जी नूं पुछ लवां घरां दे विच की बोलना है जी, सारे दस्यो की बोलना है। किते इस तरह ना होवे कि जिस तरह तोतियां दी डार नूं किसे ने एक तोता किसे रख लिया ते उहनूं महारनी पका ली भी तोतिया पोस्त नहीं खाणा, ध्यान दिओ तोतिया पोस्त नहीं खाणा। एक दिन उह तोतियां दी डार विच उड के रल गया, सारिआं नूं महारनी पकाती तोतिया पोस्त नहीं खाणा, ते सारे ही तोते उडदे उडदे जाके एक पोस्त दे खेत विच बह गए, ते सारिआं ने चुंझां भरियां पोस्त खाई जांदे ने, ते जेदी चुंज खाली होई जांदी उह आखी जांदा वा तोतिया पोस्त ना खाई मर्जी दा है, नाले खाई जांदे ने गुरमुखो, नाले अंग्रेजी ना किते न्याणिआं नाल बोली जायो ते नाले आखी जायो पंजाबी बोलनी, इस तरह दा नहीं। बार भुलो जिथे तुहाडा नहीं सरदा, मगर अपनी औलाद दे कन्नां विच ए छैत वर्गी मिठी गुरमुखी पाओ, घर विच पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखणी बच्चिआं नूं सिखाओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी नाल जोड़ो। आओ हुण बाबा फरीद जी दी रसना तों मुबारक वचन सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, फरीदा मैं भुलावा पगदा मत मैली हो जाए।
0: बस इस गल उते असी अटक गए सारे, आखो सतनाम श्री
1: वाहिगुरु।
0: इथे आण के कई बार मत्था टेकन लगे भी सोची दा मत्था थले ना लाइए, पग ना मैली हो जाए। किते भाई गुरदास जी नूं पढ़ के वेखो, होए नमाणा टह पवे, होए नमाणा इथे जदों आवे ना। ते मैं एक बार आप जी नूं बहुत बार बेनती कीती, क्योंकि दो तीन साल तो आप जी दे जोड़े झाड़दिया समा हो गया है, दास ने कई बार बेनती कीती, सज्जनो जे नवा घर बनाउणा होवे ना नवा घर, ते पहले घर नूं की करना पैंदा है, की जी सोचो, ढाउणा पैंदा है। जे पहला ढवे ना ते उत्ते नवा कितना बनू। जिहड़ा परमजीत सिंह हंकार ना भरिया वा, गुरमुखो प्यारे हो, जे गुरु दे अगे आण के टह ना पिया ते गुरमुखां वाला जीवन गुरु कितना बख्शू। पहलो हंकार रूपी महल नूं ढाउणा है इत्थे आण के, पहलो टह पवां। एक थां गुरु अमरदास महाराज पातशाह ते मालक ने संसार दे सृष्टि दे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बण आवे, किते पता नहीं किन्ने रंग विच रत्ती गई होगी अंदर आत्मा, रब्बी रंग विच जदों कह रही होगी होए।

राम कहो चित लाए, ए मन हरजी त्याए तू, एक मन एक चित पाए। एदा ख्याल रखी, ए पगा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिरखिर हासता, एदे पैर है नहीं हो मगर ए दड़ंगे बड़े मारदा ही। मन मन दी गल कीती, पगा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिरखिर हासता, ए बिना मतलब तो ही अपद्र बनाउंदा ही, गुरुद्वारे बैठा भी भज्या फिरदा ही। इनू जोड़ के भाई रे राम कहो चित लाए, हरि दे नाम दा परमेश्वर दे नाम दा लाह खट चित जोड़ के। आख्या जी की करा, कहिंदे हर जस वखर लै चलो, वखर मने सौदा। आखो सतनाम श्री, व्यापार करके ना हरि दे नाम दा। उस दर नू जदो तू वड़े, तुसी स्टोर जांदे ही हो, एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं कल गुरमुख प्यारियां दे नाल स्टोर गया सा, उथे जेड़े स्टोर विच समान खरीदन वाले नाल ट्राली लई ते नाल एक लिस्ट बनाई सी, उन्हां जेड़ी जेड़ी चीज चुकदे सी उत्ते कांटा मारी जांदे सी वी आ चीज लैण आए ए लै ली। तुसी वी व्यापारी बन के इस संसार विच आए हो, कोई लिस्ट बनाई जे की लैण आए जे? अंदर जुड़ के आखो सतनाम श्री, के भुले भटके सुते ही फिरदे आ। कोई लिस्ट बनाई जे के असी इस स्टोर विच जिथे आए ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रहा। इथे आपा तीन हटड़े बाजार दे विच, तरत पताल आकाश दे विच जिथे जन्म लिया है, इथे आपा कोई सौदा लैण आए, आपा भी कोई व्यापार करना है, कोई लिस्ट कढो अपने आप नू जां गुरु साहब नू पुछ लो सतगुरु मैं की लैण आया है। ते होई ते चेता करा रहे ने, हर जस वखर लो चलो, हर जस वखर लै चलो, हर जस

0: एक साहब ने वचन बड़ा प्यारा किया, समा दौड़ गया मेरा, कहो नानक ताके बल जाओ, बोलो कहो नानक ताके, मैं उदे तो बलहार जाना, स्पष्ट जिहा शब्द है, कहो नानक ताके बल जाओ, कलयुग में पाया जिन नाओ, कलयुग में पाया जेडे कलयुग जपदे ने सतनाम श्री वाहे, कलयुग जपण नहीं दिंदा, इन्हे टुंड मरुंड कर दिता सारी दुनिया का जीवन, कोई फुल खिड़दा ही नहीं, सारी दुनिया नू अग लगी ईरखा दवै दी, मगर साहब कहिंदे मैं बलहार जाना जिहड़ा कलयुग भी कहिंदा सतनाम श्री वाहे, ते तुसी भागां वाले हो जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर कार्ज मेरे सतगुरु सवार दिंदे गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते, गरंटी दे शब्द, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, उन्हां दे काज सवारता परमेश्वर, जेड़े जपदे ने सतनाम श्री वाहिगुरु। आओ हुण अपनियां मन बिरतियां नूं खलारो, जुड़ो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे चरणां विच, सुरत नूं टका के रखियो, मेरा सतगुरु कृपा करे मन बाहर ना जावे, सुरत बाहर ना जावे, आओ बाबा फरीद जी दे पावन वचन सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
0: वाह।
1: नाती धोती संबही सुती आए नचिंद,
0: आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पहली गल तां गुरमुखो चेते रखियो, घरां विच की बोलना हुण, पंजाबी बोलिया करनी, बच्चियां दे नाल पंजाबी पढ़नी, पंजाबी बच्चियां नूं पढ़ाउणी है। इत्थे बाबा फरीद जी बड़े प्यारे वचन कर रहे, कहिंदे नाती धोती संभी, नहा लिया धो लिया अपने आप नूं संभाल लिया, मगर सब कुछ करन तों बाद फिर सौं गई, जदों परमेश्वर नूं मिलण दा वेला आया फिर सौं गई। नाती धोती संभी सुती आए नचिंद, एक अर्थ प्रोफेसर साहब सिंह साहब ने होर कीता है, वह कहिंदे पढ़ लिख गया विद्वान बन गया, मगर सारा कुछ पढ़ लिखते गया, मगर जदों परमेश्वर की बंदगी की गल आई उदों बेहोश होके सौ गया। जिथे नितनेम की गल आई, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर जिथे नितनेम की गल आई, सिमरन की गल आई, उस गलों बेहोश होके ए जीव सौ गया। इथे मेरे सतगुरु का यह भी अर्थ बन सकता है, कोई कोई अमृत वेले उठिया होवे, नाता होवे, धोता होवे, परमेश्वर की बंदगी करता होवे। महापुरश बाबा प्रीतम सिंह साहब होए ने, उन्हां दे कोल जिहड़े विद्यार्थी रहिंदे सी, ते जदों अमृत वेले 2 बजे उठा लैंदे सी, आखो सतनाम श्री, 2 बजे इशनान करा के सिमरन बंदगी विच ला लैणा, जदों सिमरन बंदगी करके 5 बजे तक 3 घंटे अभ्यास चो नितनेम चो उठाउणा, ते कईआं मेरे वर्गियां आलसियां ने समझणा फिर, ते उन्हें आवाजां मारदे फिरना मत्थे ते हथ फेर फेर के, ओ भलिओ जे नितनेम करके सौ जाइए, ते इतना वा बड़ी सुंदर पैली बना ली होवे, उदे विच बीज पा दिता होवे, उदे उते सुहागा मार दिता होवे, मगर उदे उते बरसात हो जाए ते की जम जांदी उते, और रुकड़ी जी जम जांदी है ना, फिर वह फेर नहीं पैंदी है दंदा जिहा वाली, ते फिर बीज विचों निकलदा वा। कहण लगे इतना वह बंदगी कीती उगदी नहीं गी, जदों आपां एक वार सवेरे उठ कलोईए सिमरन कर लईए ते फिर सौ जाइए घराड़े मारन लग पईए। इथे भी बाबा जी इस तरह के वचन करते ने, कहिंदे सब कुछ जान लिया ज्ञानवान हो गया, मगर परमेश्वर दे वेले आण के सुती होए नचिंद, बोलो सुती होए, उस वेले जदों सिमरन बंदगी दा वेला आया, विद्वता तां प्राप्त कर ली, किताबां तां पढ़ लईआं, मगर सिमरन दे वेले नचिंद होके सौंगी, फिर की रह गया जी।
1: फरीदा रही सो बेली हिंगदी, गई कथूरी गंध,
0: कथूरी दा मतलब हुंदा कस्तूरी, की मतलब हुंदा जी, कहिंदे ने जिहड़ी कस्तूरी दी सुगंध छुट्टी सी ना अंदरों अमृत वेले सिमरन बंदगी करके, ओह फिर उड गई सौण दा सदका। ते हिंग दी, जदों हिंग दी बो आउंदी आ, जिहा इलाके जिहदे च हिंग हुंदी होवे, जां जिहने मुंह दे विच हिंग पाई होवे, ते कदी किसे ने आख्या हिंग दी खुशबू आ रही, की कहिंदे ने, हिंग दी बोआरी, कहिंदे फिर जिहड़ा सिमरन बंदगी वाला सुभा सी, जिहड़ी नाम बाणी वाली बिरती सी ना, ओह ते सौण करके निचिंद होके बेहोश होके सौण करके विचों कस्तूरी वाली खुशबू ते उड गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी, रही सो बेड़ी हिंग दी, बेड़ी हिंग दी बदबू ही रह गई मुंह दे विचों, केवल विद्वता रह गई, केवल ते केवल एदियां सियाणपां रह गईआं, मगर कस्तूरी वाली जिहड़ी खुशबू सी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उड़द्या पैंद्या सौंद्या ए मुंह जरा वाहगुरु निकलना सी, जेड़ी परमेश्वर का मिठा सुभा सी, ओदे मुंह माथे त्रिकुट्टी दिष्ट करूर, बोले कौड़ा जे बाकी फूड, ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਤੀ

गुण बहुते मैं एक ना जानया, मैं मूरख किश दीजे। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजे।

वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लागी हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी हो दे तो बिना उदास हो गई है, शेर देने नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे पेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर